पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाई है। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम, इस पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्मपूरे, अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चना हर जस,

बिनवंत नांग सदा निर्मल सच शब्द रोण चुनकारु सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस हृदय सुमाणी राम अकथ कहानी तिनी।

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भए किस कहन न जाई राम जिस ते उपजड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मैयल एक रव्या नै दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिरपवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रभ प्राण आधारे राम तान तनखीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना। नानक चातरक हर बूंद मांगे जब जीवा हर घर चरना। अमे सरोवरो पियो हर घर नामा राम। संत संग मिले जब पूर्ण का माराम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मनो ना बिसरै। आनंद अनंदन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर।

या राम सुख सहज आनंद विरोध सदगी गुण गोपाल नित गाई है पज साध संगे मिले रंगे बौड़ जोन ना ताई है गय कंठ लाए सह सुखाए।

कोड़ अपराध परे ई तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लेहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै

से परसे ती कर जाही, नरपत जान गयो सेवक सियाने राम, सर पर विछड़ना मोय पछताने राम, हर चंदौरी देख पूला का अस्तित पाई है, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है, हौ हौ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के

सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसे मन आए, जन्म मरण दुख कटी है, होमे ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सत्य रहे सुमाए, नानक पूर्व जन को लिखया, तेना सतगुर मिलया आए, महला तीजा, नाम रता सतगुरु है, कल युग बोयथ होए, गुरमुख होवे सो पार पवे, जिन्ना अंदर सच्चा सोए, नाम सुमाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया, कर्म प्राप्त होए पौड़ी, आपे पास आप तात है, आप की तोन कंचन, आपे ठाकुर सेव के आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कर भोगवे स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप वेक आप साबेता, आपे गुरमुख भंजन, जन नानक सालाहे ना रजे तुद करते, तू हर सुखदाता वडन, श्लोक महला चौथा, बिन सदगुर सेवे जी के बंधना, जेते कर्म कमावे, बिन सदगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जम्मे आवे जावे, बिन सदगुर सेवे फिक्का बोलना, नाम ना बसे मन आए, नानक बिन सदगुर सेवे जमपुर बद्दे मारिय, मुए काले उठ जाहे, महला तीजा, एक सदगुर की सेवा करे चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुलका करन उधार पौड़ी, आपे चार साल आप है पांदा।

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाईया, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है।

नानक गुरमुख पाईए जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप जान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते योगी की नगरी सब को वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार।

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुवार, नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन वसाया, वढ़हंस महला तीजा, हम में नावे नार विरोध है, दो नावसे एक ठाए, हम में जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए, हर चेतवन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो हम में जाए रखाओ, हम में सब शरीर है, हम में ओपत होए, हम में वड़ा गुबार है, हम में विच बुझ न सके कोए, हम में विच भगत ना हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, हम में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हम में गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर, मैं प्रा मिलन प्रेम मन आसा, गुर पूरा मेलावे मेरा प्रीतम, हों वार वार अपने गुरु को जासा रहाओ, मैं अवगण पर पूर शरीरे, हों क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे, जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, से मैं गुण नाही हों क्यों मिला मेरी माया, हों कर कर थाका उपाब हो तेरे, नानक गरीब राखो हर मेरे, वढ़हंस महला चौथा मेरा हर प्र सुंदर मैं सार ना जानी, हों हर प्र छोड़ दूजे लोभानी, हों क्यों कर पिर को मिलो ए आनी, जो पिर पावे सासो हागन साई पिर को मिले सियाणी, हरहाओ मैं विज दोस हों क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हों पिर चित न आवा, जिन पिर रावया सा पली सुहागन, से मैं गुण नाही हों क्या करी दुहागन, नित सुहागन सदा पिर रावे, मैं कर्महीन कभी गल लावे, तू पिर गुणवंता हों औगुण यारा, मैं निर्गुण बस नानक वेचारा, वढ़हंस महला चौथा कार दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर घर दर्शन पावा, हों जाए पुछाए अपने सतगुरे, गुर पुछ मन मुग्ध समझावा, भूला मन समझे गुर सबदी, हर घर सदा ते आए, नानक जिस नर करे मेरा प्यारा, सो घर चरणी चित लाए, हों सा वेश करी तिर कारण, जे हर प्रसा जे पावा, सो पर प्यारा मैं नदर ना देख, हों क्यों कर तीर्ज पावा, जिस कारण हों सीगार सिगारी, हो पे रत्ता मेरा अवरा, नानक तन तन तन सुहागन, जिन पिर आवेड़ा स सवरा, हों जाए पुछा सुहार सुहागन, तुसी क्यों पिर पायड़ा प्रा मेरा, मैं ऊपर नदर करी पिर साचे, मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा, सब मन तन जियो करो हर प्रभ का,

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे, मेरा स्वामी तेत

पंजवा सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ए रघाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ांस महला पंजवा।

अम्माली बिन फिर काम न आए जा से बात ना पुछिया अम्माली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अम्माली जिन सो रहा समाए होवारे तिन सुहागनी अम्माली तिनके धुआं सद पाए जिचर दूजा परम सा अम्माली तिचर मैं जानिया प्रदूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु अम्माली ता आसा मनसा सा पूरे मैं सर्व सुखा सुख पाया अम्माली तिर सर्ब रहा पर पूरे जन नानक हर अंग माणिया अम्माली गुर सतगुर कै लग पैरे वढ़हंस महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच्ची बाणी सच धुन

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की।

ब्राह्मणा सब उपाइगन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मंग देखे। खसम भावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे। नानका जिन नाम मिले, कर्म होआ तुर कदे। सब उपाइगन आप आपे नजर करे। वढ़ांस महला पहला, करो दया तेरा नाम खाना। सब उपाइगे आप आपे सर्ब सुमाना, सर्बे सुमाना आप तू है। उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना पिख पवाइया। लोभ मोह तुझ किया मीठा, एत परम फुलाना। सदा दया करो अपनी, ताम नाम खाना। नाम तेरा है सच्चा सदा, मैं मन पाना। दुख गया सुख आए सुमाना, गावन सुर नार सुगड़ सुजाना। सुर नार सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही, अहला जन्म गवावे।

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप शान गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो साचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड़िया ई राम। गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड़ियाई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहा सुनाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख बस होए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिरनावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द समाने सचर ते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जनवड भागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लग लागी अपना आप पछाणिया, मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वड़पागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सदगुर दिया बुझाई राम। ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजिए जां सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार आराम, कूड़ बोल बिगकावणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा। खोटे खरे

मेरे ठाकुर मेरे कित मुख तुसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया बक्सलिया खिन माघी, नौंद पाई वजी वधाई वाजे अनखल तूरे, कहो नानक मैं वर कर पाया मेरे लाथे जी सगलब सूरे। श्लोक क्या सुनिंदो कूड़ वंजन पवन चुलारिया, नानक सुनियर ते प्रवान जो सुनिंदे सच तनी, शंत तिन कोल कुमाई जिन प्रसरवणी सुनिया राम, से सह सुहेले जिन हर गरसना पणिया राम, से सह सुहेले गुणे अमूल्य जगत उधारने आए, भय बोत सागर।

मन इच्छेड़ा फल पाई गए राम, मन इच्छ पाई गए प्रवत आईये, मिटे जम के त्रस गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण अस तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाईये, बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा घर घर त्याईये, दर वाजे अनहद वाजे राम, काट काट घर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा बेराजे, अगमे अगोचरी उच्चा गुण बेअंत किश कहन न जाई, कोई न सके पहुचा आप उपाय आप प्रद पाले, जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख ना भगती, दर वजे अनहद वाजे राग बढ़हंस, महला पहला कार पंजवा अलहानिया एक ओंकार, सदगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग तन दे लाया मोलत पुन्नी पाई परी, जानी एड़ा कत चलाया जानी कत चलाया, लिखिया आया रुन्ने वीर सवाए, काया हस्ती आवे छोड़ा जादर पुन्ने मेरी माए, जेगा लिखिया तेगा पाया जेगा पुरब कुमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंडे लाया, साहेब सिमरो मेरे पाई हो सबना यो पयाना, इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना ज्यो मेहमाना, काहे गर्व की जय जित सेवे दरगे सुख पाई है, नाम तसे काली जय आगे हुक्म ना चले मूले, सिर सिर क्या विखाना, साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना यो पयाना, ज्योत पावे समृत सोचिए हिलड़ा यो संसारो, जल थल महिल रब रहा साचड़ा सिरजनहारो, साचा सिरजनहारो अलख पारो, ताका अंत न पाया आया तिनका सबल पया है, एक मन जिनी ते आया टागे टाए उसारे आपे, हुक्म सवार नहारो ज्योत पावे समृत सोचिए हिलड़ा यो संसारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए जे रोवे लाए प्यारो, वाले वे कारण बाबा रोइए रोमन सगल बेकारो, रोमन सगल बेकारो गाफल संसारो, माया कारण रोवे चंगा मंदा के सूजे नाही, यो तन एवे खोवे ऐथे आया सबको जासी, कूड़ करो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए जे रोवे लाए प्यारो, वढ़हंस महला पहला आवो मिलो सहेली हो, सचड़ा नाम लेगा रोवे बिरगा तनका अपना, साहेब सुमाले हा साहेब सुमाले पंत निहाले, असा पे उथे जाना जिसका किया तिन ही लिया, हुआ तसे का पाना जो तिन कर पाया, तो आगे आया असी के हुक्म करेगा, आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लेगा, मरना मंदा लोका आखिए ये मर जाने ऐसा कोए, सेव्यो साहब समृति अपना पंत सुहेला आगे होए, पंत सुहेले जावो ता फल पावो, आगे मिले वडाई भेटे सु जावो सच समाओ, ता पत लेखे पाई मैली जाए पावो, खसमे पावो रंग सुरलिया माने, मरना मंदा लोका आखिए जे कोई मर जाने, मरण मुनसा सूर्य हक है ये होए मरण परवाणो, सूर्य से ही आगे आखिए दरगे पावे सची मानो, दरगे मान पावे पशु जावे आगे दुख न लागे, कर एक त्यावे ता फल पावे, जित सेवे पौ पागे ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो मरण मुनसा सूर्य हक है जे होए मरे परवा।

मन माने गुरके शब्द अपार ए सज्जन मिले ना विछड़े जे आप मेले करतार एक ना दर्शन की प्रतीत न आईया शब्द न करे विचार विछड़िया का क्या विछड़े जिन्ना दूजे पाए प्यार मनमुख से ती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति तुड़दी विल मना हो गई इत दोस्ती चलन विकार जिन्ना अंदर सच्चे का पौ नाही ना।

पौड़ी। तिस गुर को हों वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई, तिस गुर को सद बलिहारणे जिन हर सेवा बणत बनाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई।

पौड़ी। गुर सिखा मन हर प्रीत है, गुर पूजने आवे। हर नाम वणजे रंग सिउ, लाहा हर नाम ले जावे। गुर सिखा के मुख उजले, हर दरगे पावे। गुर सदगुर बोल, हर नाम का वड़भागी सिख गुण।

काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल जोत निरंजन पाया गुरमुख परम पौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पावे अन दिन हर बैरागी पौड़ी से गुर सिख तन तन है जिन्नी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दरड़ाया तिर होमे दुबदा पन्नी बिन हर नावे को मित्र नाही विचार डिटा हर जन्नी जिन्ना गुर सिखा को हार संतुष्ट है तिनी

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुरु हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत

तामन गारा यो मनुआ सदा सुख वस सहजे करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मनहारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श त्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस घर नाम सुने मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर घर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया सलोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन हर प्रगट होआ नानक सहज समाए महला तीजा सबदे साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित हुए खुवार नानक किरद पये कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम को सांते आई तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई तन तन हर भगत सदगुरु हमारा जिकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम को साध समध दिखाई तन तन सदगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई सलोक महला पहला कर ही मुंद वदेश पेर ने चूरे संभाले मिलदियां।

की खबर ना पाई, अखी मीड चिल्लिया अंधियारा, हर दर्द से ना पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम ना पागै सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज वेड़ाना जल थल।

प्रभाते हरसना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे ऐनस नाम रते से सूचे मर जन में से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे सरीक न कोई प्रमत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर ना से काल न कर्मा जात अजात अजोनी संपो ना से पाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान ना से रूप वर्ण नहीं रेखिया सचे शब्द निशान रखाओ ना से माद पिता सुध बंधव ना से काम न नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरुमती निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचाचारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है तू साकत मरे प्यास त्यू हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए हर सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाईए हर पाईगे सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोडो वेस पिहत तराई दुबदा इओ फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कद जाही जियो बार ढूंढत बहु दुख पावे हर अमृत कट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को तावो तर अवगुण पछताही जियो तर अवसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाही जियो अंतर मैल लोभो झूठे बार नहावो काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड़ त्याग हो सद गुरबचनी फल पाही जियो जो पावे त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोरठ महला पहला पंच बदे

मन मेरे गुर बचनी निद पाई ताते सच मैं रहा समाई रहाओ। गुरसाखी अंतर जागी ता चंचल मत त्यागी, गुरसाखी का उजियारा ता मिटिया सगल अंधियारा। गुर चरणी मन लागा।

क्रोध अहंकारा। सदा हजूर कविया सब ठाई, हृदय नाम अपारा। जो जुग बाणी शब्द पछाणी, नाओ मीठा मने प्यारा। सदगुर सेव जे नाम पछाता, सफल जन्म जग आया। हार चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अगाया। कमल प्रगास दा रंग राता, अनखा शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोई ना बूझे, गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवे सो मग पछाणे, हर रस रस नरसाई। जब तब संजम सब गुरते होवे, हृदय नाम साई। नानक नाम संभाले से जन सोहन, दर साचे पद पाई। सोरठ महला तीजा दो तुके, सतगुर मिले उल्टी पई पाई। जीवत मरे ता बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई। ये ज्योति ज्योत मिलाए, मान रे हर घर सेती लिवलाए। मन हर जा मीठा लागे पाई, गुरमुख पाए घर थाए रखाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई, मनमुख दूजे पाए। तो कुटे मनमुख कर्म करे पाई, पल्ले किशु न पाए। गुर मिले नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवे पाई, गुर कै खेत अपार। आया सो प्रवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई गे पाई, गुर सब दी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, ती गुणी तिरपुण व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटिगे पाई। पूछो ज्ञानिया जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जू तेरे मन वसे पाई, सदा हर के गुण गाए रखाओ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरे मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरणाई उबरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। तोरठ महला तीजा कर पहला, सदगुर सुख सागर जग अंतर, होर थे सुख नाही। हौम में जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन में रोवे ताही। प्राणी सदगुर सेव सुख पाए।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए।

अंडज जेरज सेत उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूद तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सब्त है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबन रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे।

तब तप आपे सतगुर आप गए चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाउज पाएंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप गए प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलांदा प्यारा जन नानक हर स्थापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे सौ आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया हर घर नाम निधान।

प्यारा आपे शब्द समाहा, आपे लिखने आप लिखारी, आपे लेख लिखा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आनदन अनद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावर सुंदरा प्यारा, आपे वंश वजाहा।

संत संग जा का मन शीतल, ओ जाने सगली ठंडी। होमे रोग जा का मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती। ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़िया, ताको सर परगासा। अज्ञान अंधेरे सू सनाही, बहोड़ बहोड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक इहो सुख मांगे।

आदि। एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन दियो दिखाई, सुन मीता तूरी कौ बल जाई, यो मन तेरा पाई रहाओ, पा मलोवा मल मल तोवा, यो मन तय को दिशा।

सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या ती नर त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिसरे मेरा राम स्नेही जिस लाख बेदन जने आई रघाव जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुविए प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर में परया जित को लाया तित घी लागा तय सो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभवानी लोभन मैं लोभी लोभायो क्यों हार नरचे ज्ञानी हर जन को ए सुहावे ते निट कर सेवा सदगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमल से अमली लबटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार खैलीना प्रसंत से हितकारी विद्या में विद्यं सीरतिया नयन देग सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यो हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रमिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम ऐले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे आप पाई।

दाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रे तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो का टायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे।

मन से अविनाशी ताको बिघन न को लागे जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाके हर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देव न हार न जाने जियो पिंड साजन रचिया बल अपनो कर माने मन मूड़े देख रहे हो प्रस्वामी जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए शानी रखाओ जे बात लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा देख किवाड़ अनक पड़दे मह पर दारा संग फक है चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ठाक है दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभ शरणाई सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी जपंद करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई साध संग सदा सो पाई है हर बिसरना कब हो जाई हर हाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीवे विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अजुत अविनाशी आनंदन हा रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कड़ा सोहेली आद अंत मद नानक तो प्रभु आ बेली सोरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा अर तेरा बिन से अपनी तारी संत या बतावो कारी जित हो में गर्भ निवारी रखाओ सर्व भूत पार ब्रह्म कर मानिया होवा सगल रे नारी देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी सोर

ए पीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ। बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुर पूरा फेटू वड पागी, जन नानक ते ना ताव। सोरठ महला पंजवां, जाके सिमरन सब कछ पाईए, विरती काल न जाई, तिस प्रत्याग अवर कतरा चो, जो समय रहया समाई। हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार संभाले नित प्रत पाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नानक प्र तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावे।

पार ब्रह्म निभागी पूरी, ताई बात न रहिया उरी। गुर चरण लाए निस्तारे, हर घर नाम सुमारे। अपने दास का सुधार खवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता जो पाला रखाओ, वड़भागी सतगुर पाया। जिन जमका पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा। जब जीवे से वड़भागा, हर अमृत बाणी गावे। साधा की तूरी नहावे, अपना नाम आपे दिया। प्रभु करण हार रख लिया, हार दर्शन प्राण आधारा। क्यों पूर्ण विवन विचारा, हर कृपा अंतर जामी। दास नानक शरण स्वामी, सोरठ महला पनवा। गुर पूरे चरणी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जय गीता सुहेले, हर कृपा पा मिले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले वल पावो। जी कै संग सहाई ही रखाओ, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतित पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला। सा जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइये। बौड़ न जोनी पाइये, जे देवै पुरख बिधाता। हर हस्ते नहीं जाता, जम कंकर नेड़ न आया। सुख नानक सरणी पाया, सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे कीती पूरी, प्रभ रव रया पार पूरी। खेम कुशल पया इसनाना, पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना। गुर के चरण कवल तारे, बिघन ना लागे तिल का कोई। कार्य सगल सुवारे, हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए। पदत पुनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते। सबला थे पाप कमाते, गुण गोविंद ने तगाई है। सा संग मिल त्याई है, मान बांछित फल पाए। गुर पूरा हृदय ते आए।

लाती संग मिला लिया मेरे करते संत साध पैसा थी कर गए लीने सर्पस दीने आपे आप मिलाया कौ नानक सर्व तोग पूर्ण।

संतन के कारज सगल सवारे, दीन दयाल किरपाल किरपा निध, पूर्ण खसम हमारे रघाव। आओ बैठ आदर सवताई, ऊ न कतहू बाता, भग सिर पाओ जीव जने अपने, प्रताप।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के पुरजो खां गवार अजहू समझ कज बिगड़ो नाहिन पाजले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहाओ दारा मीत पूसन बंदी फगरे तन त्यो लागे जब ही निरतन देखियो नरको संग छाड़ सा पागे कहो का या मन भौरे कहो इसे उन्हें लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर निज पोखयो फसकी न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखेन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्यो गोविंद बिरद आओ सिरानी हो नानक हर बिरद पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सुने वर पै नहीं जाके कंचन माटी मान है रखाओ नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग।

प्रहला जन तुराख लय हर जीओ हर नागस मार पचाया गुरमुखा नु प्रतीत गए हर जीओ मनमुख परम पुलाया हर जी ए तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरणाई रहाओ भगतां नु जम जोए न साकै काल न नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसया नामे ही मुक्त पाई रिद्ध सिद्ध सा भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई।

पढ़ना गुड़ना संसार की कार है। अंदर तृष्णा विकार हौमे विसा पढ़त के दूजे पाए खुवार। तो पढ़या सो पंडित बीना।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए, जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल साजन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमति हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, तब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसरै, से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे, तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दब्यो, तुत्या गई विखाए। तगुर का शब्द सुनना जाग्यो, अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा, जो गुर कारना कमाए। जगत जलंदा डिठ मैं, होमे दूजे पाए। नानक गुर सरणाई उबरे, सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सबदरते होमे गई, तो बावंती नार। तिरके पाने सदा चले, ता बनया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा

करो पापिष्ट हथियारी ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन ज्यो धरकट नारी वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी सलोक महला तीजा गुरसेवा ते सुख उपजे फिर दुख न लगे आए जमन मरना मिट गया काले का किश नाम बसाए हर से ती मन रब रहा सच्चे रहा समाए नानक हो बलिहारी तिन कहो जो चलन सतगुर पाए महला तीजा तिन सबदे शुद्ध न हो गई जे अनेक करे सीगार फिर की सार न जाने दूजे पाए प्यार साक शुद्ध साक लखनी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर घर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम ते आई हर उचरा हर लाहा लैणी जो जपदे हर घर दिन सरात तिन्हों कुरबैणी जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हो वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी सलोक महला चौथा हर दर्शन स्यो प्रीत है हर दर्शन को मित हर दर्शन के वस है जो जंती कह बस जंत हर के दास हर त्याय दे कर प्रीतम स्यो ने हो कृपा करके सुनो प्रभ सब जग में वरसे में हो जो हर दर्शन की उस्तत है सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई पाम दी जनका जयकार कराई सो हर जन नाम त्याय दा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचे तिस बिन रहन न जाई सगुर मिले ता पूरा पाईए हर रस रसन रसाई पौड़ी रह

की अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु पागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही नेरै नाही दूर निज आत्म रहया पारपूर जय अनघ सूर उजियारा तय दीपक जले संचारा गुर प्रसादी जानिया जननामा सहज समानिया कार चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछले नामा का पहचान शवाई हो तो पै दुगुनी मजूरी देहो मोको बेडी देहो बताई हो री बाई बेडी देन ना जाई देख बेडी रहो समाई।

राजा राम को रस जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पए हम बावर सोच असो दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहीत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक शायर एक कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वह सोगश पाईए पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चेतन किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना, जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हां मर रही है। तना श्री मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जिस वारे साचा सोए, इस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल क्या मोह देसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सो चित लागे तिर काल ना खाए। रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। गुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेख सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे। साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब

तात मर जाए बिन मन मूवे कैसे हर पाए। इओ मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनु बख्शे हर देव डयाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोझी पावे। मान मैं मत मैं गल मिगदारा, गुर अंक समार जी वालनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अज चरे ता निर्मल होई। गुरमुख इहो मन लया सवार, होमे विचों तजै विकार। जो तुर रखे न मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाण। तनासरी महला तीजा, काचा तन संचय मूर्ख गावार। मानमुख पूले अंध गावार, बिखिया कै तान सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए।

साच रते अहे निस बैराग, क्यों जुग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग हर नाम सुमाणी, सिद्ध साधक तरसे सब लोए, पूरे पाग प्राप्त होए, सबके साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए, सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखै आपे सच लाए, तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही न जाए, से जन तन जिन एक नाम लिवलाए, गुरमत साची साचा विचार, आपे बगसे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ, हम मूर्ख मूर्ख मन माहे, होमे विच सवकार कमाहे, गुर प्रसादी होमे जाए, आपे बगसे लए मिलाए, बिखिया का धन बहुत अभिमान,

लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी जो कंचन बैसन तरतायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उतारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर होमे मारी हर हर अगम अगाध बोल अपरंपर पुरखे पारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नामरता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रगाओ संत जिना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम संगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बोलागी क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड़ पुरख वडागी तुमरी गत मिल कह न सके प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी हर प्रस्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सदगुर सदपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिसके सदकुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल तब के लिख पाप ले जानी रखा ऐसा संत सद जिन पाया ते वड़ पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रस्वामी हम घर लोच लुचानी हर घर सफल बिरख प्रस्वामी जिन जप्यो से त्रिवतानी हर घर अमृत पी त्रिवता से तबलाथी पूख पुखानी जिनके वडे पाग वड़ ऊचे तिन घर जप्यो जपानी तिन घर संगत मेल प्रस्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चल है गुर चाली सदगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो हर घर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेव हो बेग बेगाली सदगुर सेव खर्च घर बांधो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मिलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर घर बूंद पए हर स्वामी हम चातरक बिलल बिललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देव हर निमखाती हर बिन रहे ना सको एक राती ज्यों मिल अमले अमली मर जाई है त्यो हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम घर सरवर आप अगह हम ले ना सके अंत माती तू पर परय परम पर स्वामी मिद जानो अपन गाती हर के संत जना हर जप्यो गुर रंग चलू ले राती हर घर भगत बने अद सोभा हर जप्यो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरणाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर जो का धर्म कहो तुम पाई के छूटे हम छुटका की हर हर जा बेड़ी हर तुलखा हर जप्यो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जान की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखया का छूटी जमकी बाकी हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तिसना अगन बुझानी सिर चरयो चंद चंदा की तुम वड़ पुरख वड़ अगम अगोचर तुम आपे आपे पाकी जन नानक को प्रकृपा की जय कर दसन दास दसाकी।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरि सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

छूटे बिरस जाए परमाई, अंधरूप रवे उसा मध्य जल कद पेखो जाई। तुम दयाल किरपाल किरपा निध पतत पामन गोसाई, पोर सूख आनंद विराज पाए मुक्ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाई, नाम जपत तृष्णा सा बुझी है नानक तृप्त अघाई। तनहा श्री महला पंजवां जिन कीने वसे अपने त्रै गुण

साल प्रसाद हर हर हर गाय विखे ब्याल तब हुटो अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डिठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काड किसी पै सगले लर लर मुआ औंबलगारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काट।

अखंड हो अनकबीरी समझाव हो। हम अज्ञान अल्पमत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमगी सजन सुहेले। रखो रखनहार दयाला नानक करके गोले। तनासरी महला पंजवां पूजा वर्त तिलक इस नाना

गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत्यु आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नान प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी

आकाथ अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी तरबत पूर्ण ठाकुर मेरा तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार।

तिसन अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी।

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़या माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता।

त्यावक बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी मुगत पदार्थ हरस चाखे आमन जान रहे पुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकत कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जो तरहे लिवलाई तुर नरनाथ सचे सरनाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पे काटन हारे होमे मार मिले भगत हारे अनक जन कर काल संताए मन न लखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबधा खोवे आप न चीनस प्रम प्रम रोवे है तो पढ़तो सुन तो एक तीर्ज धर्म तरणी तर टेक जात सा संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लाग गुर कै शब्द परम पौ पग तूरत मूर्त आद अनूप नानक जाते साज स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिले या परवान ना तिस मरण न आवन जान ठाकुर मैं दास दास मैं सोए जय देखा ते अवर न कोय गुरमुख भगत सहज कर पाइये बिन गुर फेटे मर आइये जाए।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई, प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी, पिर कर सोहे नार।

एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुखे स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक मह तराया, पूर है या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नान सदा सिमरी सर्व दुख पय पंजनो, आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो, मोए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोविंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी ले जी सटे, परहाओ साध संत बिना पाव नहीं उपजे, पाविन भगत नहीं होए तेरी, कैरवदास एक बेनती हरस्यो, पैज रखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, ताजते नाम ले तुझे कोचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तुही चबर ठोलारे, दस अठा अड़सठ चारे खानी, एह वर्तन गए सगल संसारे, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, पना

मेरे हीरे रतन नाम घर बसया बुरहा तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बख दुख उतरे गुर नाम दियो।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी पिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एका वारी माया पोयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमारा कहा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तौ वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखाण डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा हम बार कशु ना जाने गत मित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा। नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा। थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा। संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार। सदगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग। तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग। रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग। तेरे ओ सागर पावक को जो संत फेटे वड भाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा। त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा। रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा। आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा। नाव रूप पयो सत संग पंध पार परा। आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाई। दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याध नकाई। रहाओ दिसे सब संग

सदगुर प्रसाद पूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेहे ते आप बंधायो रहाओ समझना परी दिखे रस रचयो जिस हर को बिसरायो पंग स्वामी सो जान्यो नाहिन पर खोजन को तहायो रतन राम कटही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बेन बिरथा जन्म गवायो जयत श्री महला नामा हारजू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पयो और अंतर शरण गही कृपा न तेरी अरहाओ महापतत मुग्ध लोभी फोन करत पाप अभारा पय मरबे को विसरत नाहन ते चिंता तन जारा कियो पाप मुद के कारण तेज को उठताया कटही भीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया नाहिन गुण नाहिन का जप तप कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर शरणागत अपहे दान प्रव दीजे जयत श्री महला नामा मान रहे साचा गहो बिचारा आराम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ जाको जोगी खोज दिखारे पायो नाहे ते पारा तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा पाम नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा जयत श्री महला पंजवा शांत कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संगमीत शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया इस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खोजंतिया ते दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नयन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल फीना थीरीजे प्रस्यो मन लीना ज्यो जल मीना क्यात विदिवे तसंतिया जन नान गुर पूरा पाय तगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रेहबे सगिया मुँह कई ना जइया यार वे एक डू एक चाड़े होके चेतिया एक डू एक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा किन्नी मैंडा लाल रीझाया होत आगे मन ढेया नानक कहे सुन बिनो सुहागन मूंद डिखा पिर कहिया यार वे पिरया पणफाणा किश नी सी छंदा यार वे तैराव्या लालन मूह तद संदा लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाणे बां पगड़ ठागर हो कि दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू के सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई वरलोड़ी दा आया वजी वाधाई महामंगल रहसतिया फिर दयाल सदना वरंगिया वड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी था मैं गुर मिल पाई जयत श्री महला पंजवा कर दूजा शंत एक ओंकार सदगुर प्रसाद स्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कसन न जाए अकत नांग प्रसरणागति राखन को समरथ शंत जो जानो त्यों राख हर प्रो तेरिया एते करो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रसर फूलिए मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिए लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया बिनवंत नान दया तारो ताड़ पव जल फेरिया श्लोक निरतन पवे असंख गुण

त्याईए, त्याए सो पर सदा अपना मने चिंदया पाईए, तजमान वो विकार दूजा एक स्यों लिव लाईए, अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाईए, बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाईए। श्लोक हरे मनता को त्याईए, सब जाके हाथ राम नाम तन संचिए, नानक निधे साथ शंत साथीड़ा प्रप एक दूसर नागे कोय, थान तनंतर आप जल थल पूर सोय, जल थल महील पूर रहे सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही प्यंत गुणता के क्या गनी, पर शरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अननाहे कोय, बिनवंत नानक दया तार हो तिस प्राप्त नाम होय। श्लोक चित जे चितवया सो मैं पाया, नानक नाम ते आए सुख सुबाया शांत, अब मन छूट गया साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया ज्योति जो तरले, और नाम सिमरत मिटे किल बिख बुझी तप्त अघानिया, कह पूजा लीने दया कीने अपने कर मानिया, ले अंक लाए हर मिलाए जन मरना दुख जले, बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले, जैत सरी शांत महला पंजवा, पाधाणु संसार गर्व अटिया, करते पाप अनेक माया रंग रटिया, लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीत न आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता हे कर्त बिहावे, पुज दिस से आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया, किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया, उद्म करे अनेक हर नाम ना गावही, परमे जून असंख मर जन्मे आवही, पशु पंखी सैल तरवर कंत कशु न आवे, बीज बोवस भोग भोग किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु अपना पावही, बिनवंत नानक परमे परमाए किन एक टिकन ना पावही, जो बन गया बेतीत जरमल बैठिया, कर कंपे सिर डोल नैन ना डीठिया, नैन नैन दीसे बिन पजन ईसे, छोड़ माया चालिया, हया ना माने सिर खाक शान, जिन संग मन तन जालिया,

इड़तन रूपहीन किज साक न सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभो एसो प्रसन्ना तलोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसनं रचत मूड अज्ञान अंध नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस पोक जागत पगलाया आर जा गई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप उराया श्लोक संत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड़ तमाशय चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख फद कर जानिया।

सदगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन, पंच दुख और अंग रोग ए तंते सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारे प्रेम गयो मोय हर अंग पीन। देखो लालन पाड़ बीज खोय अंध चिता हरखे

कर्म तर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रखाओ प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट को सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवां प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमखी रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खो वो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समर्थ।

दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूरा दय दिस रब रहा जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जिस गावे करते ते दिन कभू न मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपत को इस जी के फिर हर नानक जाने कूर टोडी मोहल्ला पनवा माई मेरे मन की प्यास एकन रहे न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तनते सब के लिखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी विमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा फेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजे कोड़ सूर नांग पर।

गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध शिष पावे अज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सद गुरु दान देवा।

तब हर हर हर जस त्यायो, जन नानक कौ हर भेटे स्वामी, दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहाओ, जुगज करे सो।

जप मन राम नाम निस्तार, कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे। हर पव जिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त।

करे सोहर नाम विहाजे तो साहु सच्चा बणजारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हार निरंजन निरंकारा। सदा सदा हर त्याये सुखदाता जाका अंत न पारा वारा। रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर राखे उदर मंजारा। सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान हर अंत शिडामन हारा। जाके हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा। हर कृपा ते पाएगे हर जप नानक नाम अधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मान हर हर नाम नित ध्याए। जो इच्छे सोई फल पावे फिर दूर।

तन मैल न पावे, विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती, माया माए समाणी, इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे, किन्नी बाती सो पाई है, जो किश करे सो पला करमानी है, हिकमत हुक्म चुकाई है। जा के प्रेम पदार्थ पाई है, तौ चरणी चित लाई है, सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे, ऐसा परमल लाई है। एव कह सुहागणी पैणे, किन्नी बाती सो पाई है, आप गवाएगे ता सो पाएगे, और कैसी चतराई। सौ नदर कर देख सोधन लिख, कामण नौ निध पाई, अपने कंत प्यारी सा सुहागण, नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती, अहे निस पाए समाणी, सुंदर साए स्वरूप चखण, कहिए सास।

गुरु साबास है हर देश स्नेहा, ओ वेख वे गुरु विकसया, गौर सदगुर देखा, गोरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी, जेन सुन सिखा गुरमनिया तिना भुख सब जावी, हर का मार्ग आखिए कौ किदबद जाइए, हर घर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए, जिन गुरमुख हर आरा दया सीसा वडदाने, हों सतगुर कौ सदवारिया गुर भजन समाने, तू ठाकुर तू साहिब तू है मेरा मीरा, तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा, आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

चेतना है तो चेतल है, निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहाक है, फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो ती संग न होया रहाओ, माग पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जाको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मनिहो लगायो, काल फास जब गल परी।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निसाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए।

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दिष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निजर चरे सह तुन लागे करगी परचा पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजों सिंगी वाज तौ निरभौ पल पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिल हारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को रा होय, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह सुमाए, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लो भाई, अरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए, अरहाओ अरवदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाय, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नाग तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाओ तोर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, इनकी सेवा ते घर पाई है, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद विखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूफी महला चौथा, जिथे घर आरा दिए, तिथे घर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत बिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, अरहाओ सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर मानक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगता को मिली वडियाई, हर तन निरपौ सदा सदा, अस्थिर है साचा।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सिरट सब साजी कोई सेवा करो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, कहो नानक प्रभु बिनो सुनीज, कुचल कठोर

सारे सगल समग्री सूत तुम्हारे तू प्रीतमा तू प्राण आधारे तुम ही पेख पेख मन बगसारे अरहाव अनक जोन प्रम प्रम प्रमहारे ओढ़ गही अब सा संगारे अगम अगोचर अलख अपारे नानक सिमर देन रह नारे सूही महला पंजवा कवन काज माया वडियाई जा को बिनसत बार न काई यो सुपना सोबत नहीं जाने अचेत बवस्था मह लपटान अरहाओ महा मोय मोयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सिधारा ऊच ते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे उपारा दूसर हो आना को होई जप नानक प्रभ एक को सोई सूही महला पंजवा सेमर सेमर ताक हो जीवा चरण कमल तेरे तोये तोये पीवा तू हर मेरा अंतर जामी भगत जना के संग स्वामी अरहाओ सुन सुन अमृत नाम ते आवा आड़ पैर तेरे गुण गावा पेख पेख लीला मन आनंदा गुण अपार प्राभ परमानंदा जाग के सिमरन पज पौ ना व्यापे सदा सदा नानक हर जापे सूही महला पंजवा गुर के बचन हृदय ध्यान तारी

साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करण आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तुजारी, दृढ़ नाम दान इसनान सोचारी, कहो नानक इहो तत बीचारी, राम नाम जप पार उतारी, सूही महला पंजवां, लोभ मोहे मगन अपराधी, करण हार की सेवना साधी।

क्रोध लोभ मोह बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनीजे दूपत पाहन प्रभ मेरे लीजे सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए तिस जान कर्म प्राप्त होए सुन साजन इउं दुत्तर तरिए मिल साधु हर नाम उच्चरिए रखाओ एक बिना दूजा नहीं जाने घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किछ करे सोई फल मानै।

करै अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास सूही महला पंजवां मीत साजन सुध बंदब पाई जद कद पेखो हर संग सहाई जात मेरी पत मेरी तन हर नाम सूग सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जब पैर सनाहा कोड आबद तिस बेद तनाह हर चरण सरण गढ़ कोट हमार काल कंटक जम तिसना बिदार नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मुरारी सूही महला पंजवां गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद विनोद मंगल।

तू मैं छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग बिपत अद पारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़लाए, हर चरण गए नानक सरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

जाए, सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवां, प्राते काल हर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा सदा

गुण गावत अचुत अबनासी, ताते काटी जम की फासी, हर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए, सूही महला पंजवा, अमृत बजन साध की बाणी, जो जो जप तिसकी गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, अरहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन महे परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई।

कामना तौर हर जित हर बसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना किते काज जित नहे त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ सोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमरत रह नानक दान पाए सूही महला पंजवां।

सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा पासारा, तेरा रूप अगम है, अरूप तेरा दरसारा, हौ कुरबाणी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा, सब इच्छा पूरिया या पाया अगम अपारा, गुरु नानक मिलया पार ब्रह्म तेरिया चरणा कौ बलिहार, राग सूही महला पंजवा कार सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए, जिसनु होए दयाला साई भगत जो तुद पावे, तू सर्ब दियां प्रदपाला, मेरे राम राय संतां टेक तुम्हारी, जो तुद पावे सो प्रवान, मन तन तू है आधारी।

तेरे दर्शन को बल जाई अमृत भजन दे उरतारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गात तुझ पैसारी तुझ जेवड़ अवर ना कोई जिसनू लाए लाए सो लागे भगत तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठे पावा सास सास नानक आराधे आठ पैर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया मद

सेवक कौ पौ किश नाही, जाम नहीं आवे नेरे, रहाओ जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मेटे कोई, सदगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्टले सद है, ज्ञान त्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रख नगारे, जित तू लावे, तेत हम लागे।

सच्चे की लिव उबर बक्से बक्सन हार जियो आनको की जे मित्रड़ा खा करले मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया उल पुलिया वे जाए जियो नदर प्रभु ते छुटिए नदरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान विगुचिए बुरा भला दो नाल जियो बिन

मनना पिजई आत्मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आईए अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बख्शनहार गुरसबदी मैल उतरे ता सच बनया सी गार सच्चा सहो सच्चे वणजारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावई दुख ही महे पचन होमे मैला जग फिरे मरजमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सच्चे सत्यार गुर पूरे पूरी मत है अहेरस नाम ते आए होमे मेरा बड़ रोग है विचों ठाक रहा पुरसाला ही अपना नेव नेव लागा पाए तान मन सौंपी आगे तरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुचिए एक स्यों लिवलाए होमे मेरा छड तू ता सच रह सुमाए सतगुरु नु मिले से पायर सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़े दर सत्य दिसन से भाई से सजना जो सच्चा से वन अवगण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपज सच्ची भगत करेन सच वणजै गुर शब्द स्यों लाहा नाम लैन तोयना रूपा पाप कर संचिए

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम भुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, फिर का सहज ना पाया, सदगुर पूछ ना मार्ग।

प्रसोई गुर की कार करे तन बालड़िए हरवर दे मिलाए राम हर के रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम मिल प्रीतम सुख पाए सच सुमाए सच वरते सब थाई सच्चा सीगार करे दिन राती कामन सच सुमाई हर सुखदाता शब्द पछाता कामन लया कंठ लाए नानक महली महल पछाणे।

मन वसाई पूर्व लिखिया पाया से सुखाली मेरे प्रपाणी सच सीकार बनाया कामना निर्मल होमे मल कोई गुरमत सच सुनाई नानक आ मिलाई करत नाम नवे निध पाई।

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल।

नदर प्रभु सत्संग हर मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रव कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रव काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर्पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवेंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी काट काट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लए मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहेर सुनाम ते आए इहो जगो दुत्तर।

नित ऐसा मन चितवे, मन तृष्णा भुख गवाया, अणता तान तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम सलाहे तू, बिन आवे पज पज मोया, गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया, मेरे हिरदय शुद्ध बुद्ध विसर गई, मन ऐसा चिंत वसारिया, मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारिया, वडभागी प्रव्याय मेला।

पग मिले संत प्यारिया और चरण लाग गए परम पग काज सगल सवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जावड़ पग बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आग अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर घर दुख नसे रहस उपजय मन कणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुखपणा होए रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभाव बिनवंत नानक दया धारो सदा हर गुण गावा गुरमिल सागर तरिया हर चरण जगत निस्तरिया हर चरण त्याए सफल पाए मिटे आमन जाना पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभाव जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ तिहाया सगल इच्छा पुनिया हौ ताप बिनसे सदा सरसे प्रा मिले चिरी मिशुनिया मन सांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरे बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया।

जपिए, मिल सतगुरु सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो, उन्नी इच्छ सुभाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती, मरे न आवे जाई राम। अवनासी पाया नाम त्याया, सगल मनोरथ पाए। सांत सहज आनंद कनेरे, गुर चरणी मन लाए। पूर रहया काट काट अवनासी, थान थनन तरसाई। को नानक कार्य सगले पूरे, गुर चरणी मन लाई। सूही महला पंजवां, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी।

हार गुण सुनिए अवनासी, करोड़ हस्त तेरी टेल कमाव है, चरण चले प्रभ महार ग्राम, पाव सागर नाभ हर सेवा, जो चढ़े तेस तार ग्राम, भवजल तरिया हर घर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे, महाविकार गए सुख उपजे,

बिनवंत नानक इश पुन्नी एख दर्शन जीजे राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हों सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान औगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले काड़ काड़ वासी सर्ब निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत।

सच रते से निर्मल होमे तज विकार जिस तू मिले सो तु मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सूविये सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ।

पौड़ी सच्चा अमर चलायोन कर सत फुरमान सदा निचल रब रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आप युगम चला।

ठाकरे मनसाते थारय अवरना सूझ गुर को वारय नानक नाम रते निस्तारय बिलावल मुहला पहला गुरबचनी मन सहज ध्यान हर के रंगरता मन माने मनमुख परम भुले बौराने हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पहचाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हार बिन जीरा है न सके खेन सदगुर बूझ बुझाई रखाओ मेरा प्रा बिसर औ मरो दुखाली साज गिराज जपो अपने घर पाली सद बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली अकथ कथा कही है गुर पाए पर अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करणी क्या कार कमाए हौ में मेड़ चले गोर शब्द सुमाए मानमुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा धारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास बिलावल मोहला तीजा कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटंब सहत स्यों जित हुण खसम न पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा भाव न देई लिव लागन जिन हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तय दुख निवारे रखाओ तू दयाल दयापद दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंस तुझते होए ऐसा आग बखाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले इनकी गहन गद कही ना जाई सच्चे आप सवारे परम पुराने से मनमुख कही है ना उरवार न पारे जिसनु नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे नानक पाग वेज मस्तक काल है मार बिदारे बिलावल मोहला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तेते दूजा नाही कोए तेदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसे मन आए ता को जाने दुबदा जाए रखाओ आप श्राप तसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनु मिले सो निर्मल होए जिसनु लाए लगे तसे आए सब सच दिखाले ना सच सुमाए आपे लिव तात गए आपे आप जाए आपे जापे आपे सदगुर शब्द गए आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल मोहला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कहे बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है सब मैं एक समाना सदगुर परचय घर नाम समाना जिस कर्म होवे सो सदगुर पाए आन दिन लागे सहज त्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा भगयाना आपे गोरो चेला गए आपे आपे गुणी निधाना ज्यों आप चलाए तिवे कोई चाले

आई, अत्यंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते शोभा पाई, जगदीश वो में अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जमपिख है, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय दिखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया।

जो नडुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन आराम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हिरदे हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जने अपना ज्यों प्रहलाद हरनास ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना। कामन कमन की गत मित कहिए हर की गे पतत पवन्ना। ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हार उतरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दासन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख लेवो।

बात होवै नहीं। अपना पला सब कोई बछ सो करे जे मेरे चित ना चितैनी। मन की मत ते आगो हरजन एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे ते वे बोलैनी। बलाबल मोहल्ला चौथा आनंद मूल त्यायो पुरखोत्म अन दिन अंध आनंदे। धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे वड़भागी गुर सदगुर पाया। गुण गाए परमानंदे रघाओ साकत मूड़ माया के बधक विच माया फिरे फिरंदे। तृष्णा जल तक किरत के बांधे जो तेली बल्द पवंदे। गुरमुख सेव लगे से उधरे वड़भागी सेव

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइए घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित आसा हुए निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पावो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा फिर से हरख सोगत रह निरारा शेरी ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

मोहि अनाथ तुमरी शरणाई, तर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मोहि निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम होता। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब।

मिले प्यारे, दो जन होत निखाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनु हुए दयाला। सबल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन्हें अपना प्रभ जाता,

आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही चरना। अरहाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बसरे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। दुसु करत जन्म।

तान मन तान अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रा मंगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन रखाओ, आनक जुत कर बहुत बीचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत नहीं चतराई, ता मिलगे जान लय मिलाई, नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिरावल महला पंजवा, माद पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे रखाओ, तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरा वडभागी पाइये, मिल साधु हर नाम त्याइये, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल भी काटे पर गुर के चरना रखाओ, आवर कर्म सब लोका चार, विर साधु संग हुए उधार, सिमरत सास्त वेद विचारे, जपिगे नाम जित पार उतारे, जन नानक कौ

चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे ज्यो बालू कर बार बिनसत बार ना लग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी ताज गए कार बार रखाओ। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृढ़ मानसा बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सै सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन कियां वडियाईयां बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो। लपट रहो मन बसना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुरते छुट्टे दोह अर रागो हृदय प्रगास प्रगट पया निसबा सर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया मन तन सीत लागो। बिलावल मुहला पंजवा लाल रंग तिसको लगा जिस केवड भागा मैला कदे ना होवई न लागे दागा। पर पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए सहज सुमाना पीतरे छोड़या न जाए। रखाओ जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृता घानिया गुर अमर कराया। सो जाने जन चाखया हर नाम अमोला कीमत कई ना जाइए क्या कह मुख बोला। सबल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी पाव तूर तेरी दास की नानक कुरबाणी। बिलावल मुहला पंजवा राखो अपनी सरन प्रभ मोगे कृपा तारे सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारे। मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम पराधीस फूलते तुम बख्शन हारे। रघाओ हम अवगुण करे असंख नीत तुम निर्गुण दाता रे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देव हो सब कुछ दया तार हम अकिरत कन्हारे लाग परे तेरे दान स्यों नए चित कसमारे। तोय ते भार किश नहीं पव काटन हारे कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुग्ध उधारे। बिलावल मुहला पंजवा दोष ना काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कई एकताए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ ज्यों तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा। नी तरिया तर तेरिया एक नाम अधारा जो तुम

अंध कुब मैं गलत थे ताडे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पैबिर से त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ सराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कान समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सदबल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए सीस कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रवते पावो देव सूनी साधके बीजन ठो लावो रगाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वारस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो ऊठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर सरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसे वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

रोग रगाओ औगध हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हित फिर दुख ना जाप हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उत्तरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

राम नाम तन संचय जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई।

को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई।

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेयन अपनी कल तारी मन बांझत फल दितेयन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवणी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती।

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामन आवत है जा सों राच माय तुम लागे मोह मोहनी मोहावत है रहाओ कनक कामनी सेज सोनी जोड़ खिने मह जावत है उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखिठ गौरी कावत है तिरण को मंदर साज सवारे हो पाग तले जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है पंच दूत मोड़ पर ठाडे केस गए फेरावत है दिटन आवे अंध अज्ञानी सोई रहो मदमावत है जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत है कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है बिलावल महला पंजवां हार घर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली कहो नानक प्रेरवि सुहागन आतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साध दयारा तब ते दुरमत दूर पई रखाओ पूर्ण पूरे हो संपूर्ण तीतल सांत दयाल दई काम क्रोध न अहंकारा तंते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते यो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई बिलावल महला पंजवां क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिए किस कथन न जाई जय जय देखा तय रया समाई रखाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए तय मेरे प्रभु तू है सगाई शरण परे उहर चरण गए प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवां आगम रूप अवनासी करता पातत पवित एक निमख जपाइए आचरज सुनियो प्रात भेट ले संत चरण चरण मन लाइये कित विधिये कित संजम पाइये कौ सुरजन के ज्योति त्यागे रखाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओत की लई लई फुन जाइये नानक सरन सरन सुख सागर मुए टेक तेरो एक नाइये बिलावल महला पंजवां संत सरन संत टहल करी तंद बंद आर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रखाओ सुख सहज आर कनो आनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरन सको गुर पूरे मेरी उल्ट तरी पेख्यो मून

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। बिलावल मोहल्ला पंजवां। सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख ना व्यापे, आगे दरगे पूर्ण काम रहाओ, आप त्याग परिये ने सरणी, गुरते पाएगे इहो निदान, जन्म मरण की कटिए फांसी, ताची दरगे का निशान, जो तुम करो सोई फल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक ताकी सरणाई, जा का किया सगल जहान। बिलावल मोहल्ला पंजवां। मान तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर वकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही रहाओ, कोल समूह उदरे खिन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अंध सेती बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, और सागर पार पराही, संत सेव

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इओ पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक उत्तर मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव।

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई राम नाम जप निर्मल मंत बिलावल महला पंजवा ताप आप ते राखे आप शीतल पै गुर चरणी लागे राम नाम हिरदे मैं जा परहाओ कर कृपा हस प्रदीने जगत उदाहरण नवखण प्रताप दुख बिन से सुख अन्न प्रवेशा कृष्ण बुझी मन तन सच त्राप अनाथ को नाथ शरण समर्थ सगल सहित को माई बाप भगत वछल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल मोहल्ला पंजवा जिस ते उपजिया तिसे पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रखाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुड़ सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ समरथ निमाणिया कुमार।

जो जो कीनो सो तुम जानो पेख्यो ठौर नाही कछ तीठ मुकरण बड़ प्रताप सुनो प्र तुमरो ओट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाव सदा सदा फूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं किरपाल किरपा निध जीवन पद नानक हर दसन बिलावल महला पंजवां।

दूत धुट सब होए खया, गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पंजवां, बिन पय भगती तरन कैसे, करो अनुग्रह पत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव, सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे, औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे, सरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए। जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खय। महामुत अजान अज्ञानी रखे थार दए। कहो नानक गुरपुरा फेट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी उपजो चाओ मिलन प्रीतम रहे ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि अंधले टेक नेर थन थन पायो। प्रव नानक अनक गुनी राग बिलावल महला पंजवां कर तेरवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हावे हार कजर बस्तर अवरन कीने। ओडीनी ओडीनी ओडीनी तब कर आवे री रखाओ। शरण सुहागन चरण शीश धर लालन मोहे मिलावो तब कर आवेरी। तुनो सहेरी मिलन बात कहो सगरो अंग मिटावो तो कर ही लालन पावो। तरस मंगल गुण गावो आनंद रूप त्यावो नानक द्वारे आयो। तौ मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावे आमोय नींद सुहावे। ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावल मोहला पंजवां। मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना। आव चरण गहे रखाओ आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे। उलज्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे। एके हर लाहे अन ते टूटिए रिखते छूटिए। मान हरस कूटिए संग साधु उल्टिए। अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पए जी जानो। रखाओ गज की त्रास मिट्टी छिन्हू में जब ही राम बखानो। नारद कैत सुंद त्रू बारक भजन माए लबटानो। अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कैत भगत रशक हर निकट ताए तुम मानो। बिलावल महला नामा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके। गुर ए पेद बतावे रखाओ कहां पयो तीर्थ व्रत किए आराम सरन नहीं आवे। जोग जग निफलते मानो जो प्रजस बसरावे।

आप ना बूझे लोक बजावे, मन का अंधा अंध कमावे, तार कर महल ठौर कैसे पावे। हर जियो सेव गे अंतर जामी, कट कट अंतर इसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चले पै नामी। साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने। गुरमुख नाम सदा सदा वखाने, सदगुर सेवे दूजी दुरमत जाई। औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई। सदगुर मिले वड्डी वडियाई, दुख काट हिरदे नाम साई। नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मुख द्वार। नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां

रस गीत गवैया गुरमुख परचय कंचन काया निरपो ज्योति ज्योत मिलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खेन पल रह न सको बिन नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रखाओ ए गृह द्वार है जाके अहे निस तस्कर पांच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावे मानमुख अंधले खबर न पैया कंचन कोट बहुमानक भरिया जागे ज्ञान तत् लिवलैया तस्कर हेरू आए लोकाने गुर के शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत भोयता खेवट शब्द गुर पार लंघैया जम जागा ती नेड़ न आवे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राती मैं हर से कहते अंत न लहिया गुरमुख मनवा इकत कर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्त धर्म बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृट सब सम कर जाने नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया राम नाम है ज्योत सबाई गुरमुख आपे अलख लखैया नानक दीन दयाल पय है भगत पाए हर नाम समैया बिलावल मोहल्ला चौथा हर हर नाम शीतल जल प्याव हो हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत्संगत परम पद पाया मेहरड पलास संघर भुइया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया शरण परे से जन उभरे जो प्रहलाद उदार सुमैया रखाओ पार अठारे मैं चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुई सागत कूड़े ऊब सुख हुए मन अपमान विछड़ दूर गईया हार गात मित करता आपे जाने साबित हर हर आप बनैया जिस सदगुर पेटे तो कंचन होवे जो तो लिखिया सो मिटे ना मिटैया रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत पंडार खुलैया गोर चरणे एक सरदा उबजी मैं हर गुण कहते तृप्त ना पैया परम बैराग नित नित हर त्याय मैं हर गुण कहते पाम नी कैया बार बार खिन खिन पल कहिए आर पार ना पावे परे परैया शास्त्र वेद पुराण पुकारे धर्म करो खट कर्म दरड़ैया मन मुख पाखंड परम विभूते लोभ लहर नाव पार बुड़ैया नाम जपो नामे गल पावो सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया होमे जाय तन निर्मल होवे गुरमुख परचे परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंतव जाए वाजे जित फावे तित रहे चलैया बिलावल मोहल्ला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हौ बल बल सदगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण मसाए सदगुर परस हर नाम सुमैया जन कीटे हर नाम टकैया सदगुर की तर लागा जाव गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ यो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मत मत तत् कढ़ैया लाल जवे हर नाम प्रगासया पांडे पाओ पवे तित अय्या दासन दास दास हो रहीये योजन राम भगत निज पैया मन बोध अर्प थरो गुर आगे गुर प्रसादी मैं आकाथ कसैया मनमुख माया मोहे आपे यो मंत्रिशना जल तित खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया यो मन नाटे सदगुर आगे अनगल शब्द तुन तूर बजैया हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर की रंग रता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज करतार चुए अत निर्मल जिन पिया तिनही सुख लैया मन कर्म करे अभमानी जो बालक बालू कर उसरैया आवे लहर सुमंद सागर की खिन मह पिन पिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे यो जग है सब खेल खेलैया जो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया बिलावल मोहल्ला चौथा सदगुर परचे मन मुद्रा पाई गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण
दो मिट गईया, मेरे मान साध संगत मिल रहीया, कृपा करो मसूदन माधो, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहा, तजे ग्रस्त पया बनवासी, एकन मनुआ टिके ना टकैया, तावत ताए तदे कर आवे, हर घर साधु शरण पवैया, तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया, आसा आस करे नहीं बूझे, गुर कै शब्द नाराज सुख लैया, उबजी तर्क दिगंबर हुआ, मन दहे दिस चल चल गमन करैया, पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा, मिल संग साथ दया कर लैया, आसन सिद्ध सिखे बो तेरे, मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया, तृप्त संतोख मन सांतन आवे, मेरे साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया, पंडज जेरज सेत उत्खुज, तवर्ण रूप जीजंत उपैया, साधु शरण परे सो उबरे, खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया, नामा जय दियो कंबीर त्रिलोचन, औजात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन थना जट सैन मिलया हरदैया, संत जना की हर पैज रखाई।

लेहो लड़लाए, नानका नाम ते आए। दीनानाथ दयाल मेरे स्वामी, दीनानाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ। संसार विखिया कूप, ताम अज्ञान मोहत कूप, गय पूजा प्रभ जी लेहो। हर नाम अपना देहो, प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो। नानका बल बल जाओ, लोभ मोह बादी देह, बिन भजन होवत खेहे। जमदूत महापयान, चित गुप्त कर्म है जान, देन रैन साख सुनाए। नानका हर शरणाए, पय पंजना मुरार, कर दया पतत उधार। मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे। गय ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ। हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल। मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस। एक निमख रहन ना जाए, वड़भाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत। जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। जो तरन परत परान, जो लोभिये तन दान। जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग। जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। ज्यो दीप पतन पतंग, ज्यो चोर हिरत निसंग। मैगल कामे बंद, ज्यो ग्रस्त बखई तंद। ज्यो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए। कुरंक ना देने हो, चातरक चाहत में हो। जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग। रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले। उल समूह करत उधार, संसार उतर सपार। हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखे मुरार, हर नानक शरण दो।

खानी चारे बाणी पेदा अष्ट दिशा खट तीन उपाय तो बुझे जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा वरुण तनानक हमता के दासा पंचमी पंच पूत बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दार कर साचे देख हदूर झूठे को ना ही पदनाओ कव न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले पग दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रभावे ता महल बुलावे शब्दे फेदे तौ पद पावे कर कर वेश खपे लै जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी संतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजर दे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमें मनुआ रहा लिव लाए परुण तनानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महा

जिस लहे मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख होवे सो करे विचार, सच संजम

गोविंद के सब इश पुजामी राम नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम रखे नेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम प्रापेहत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया दिखिया रस पीके राम नानक जल जले समाया ज्योति।

जे हर त्याग अवर की आस कीजे ता हर निफल सब काल गवासा मेरे मान हर सेवे सुख दाता स्वामी जित सेवे सा भुख लखासा मेरे मान हर ऊपर कीजे।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पगमल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन्म बसे कर कृपा जन लिये छिड़ाए जिसके से तिन रखे हटाए।

मिटे हरनाए दुख बिन से सो कीनो उठाओ। जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए। राम जपत जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ। गुर के चरण हृदय उर तारे।

माद गर्भ में अगन्ना जोग है, काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है, साध संग जप पे निरंकार, निंदक कह मोह लागै शार, राम कवच दास का सुनाहो, दो दुष्ट तिस पोहु तनाहे, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय।

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

जैसे गाय का बाछा छूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, पुर पीड़ित अलख लखाया, जैसे बिखे हिद पर

तुलखा लंघ है जेत, अंतर पायत से तू रख, अहंस दीवा बले अथक, ऐसा दीवा नीर तराए, जे दीवे सब सोजी पाए रखाओ, अच्छी मिट्टी सोजी होए, ताका किया मन है सोए, करणी ते कर चको टाल, ऐथ है उथे निभही नाल, आपे नदर करे जा सोए, गुरमुख विरला बूझे कोए, तेत कर दीवा निचल होए, पानी मरे ना बुझाया जाए, ऐसा दीवा नीर तराए, डोले वाओ ना वड्डा होए, जापे जो सिंघासन लोए, खत्री ब्राह्मण सूद के वैस, नृतन पाइया गणी सहंस, ऐसा दीवा बाले कोए, नानक सोबा रंगत होए, राम कली महला पहला, तुदनु नेवण मनन तेरा नाव, साज पेट बैसन कौताव, ससन तो होए अरदास, ता सुन शब्द बखाले पास, नानक बिरता कोई ना होए, ऐसी दरगे साचा सोए रखाओ, प्राप्त पोता करम पसाओ, तू देव है मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवित्र आए, तुरते छोड़ी की

आए कर कृपा आप मिलावे राम मोको हर जन मेल मन पावे अम्यो अम्यो हर सह मीठा मिल संत जना मुख पावे रखाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावे हम होत तेरी दाग दासन की मेरा ठाकुर खुशी कराए सेव जन सेवे से वड़पागी यदि मंत्र प्रीत लगावे बिन प्रीति करे बो बाता कूड़ बोल कूड़ो फल पावे मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे औ काटो काट बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जीवड़ पा हुए वड़ मेरे जन मिलदिया टिल न लाइये हर दिन अमृत कुण सर नीके वड़पागी तित ना भाइये राम मोको हर जन कारे लागे हो पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाई गये रगाओ हर दिन वड़े वड़े वड़ ऊचे जो सदगुर मेल मिलाए गए सदगुर जेवड़ अवर न कोई मिल सदगुर पुरख तिहाई गे सदगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई गे एक अपने स्वाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाए गे बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखु मुख लाई गे नानक मेल मेल प्रसंगत मिल संगत हंस कराइये राम कली महला चौथा सदगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगे गुर चरणी जिन हर प्रा मार्ग पंथ दिखाया।

का वे प्रभाव रहत है स्वामी, एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई, पूर्ण न काही बाता, तत सार परम पद पाया, तोड़ न कतहु जाता, वर्ण न साको जैसा तू है साचे अलाख्य पारा, अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा, राम कली महला पंजवा, तू दाना तू अवचल तू ही, तू जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोले नाही।

तुम मैं मान कलाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मध बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सासी गारी रखाओ, आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ, पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पाद दिखावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत होवे दिन राती, हर कड़वा जे तूरा, एक नचाव है, एक पवाव है, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक

गर्भ है परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता दो दिहाई, रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा ताई, मांगे टूका तृप्त ना पावे, नाद छोड़ जाचे लाज न आवे, क्याल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गुर कीते बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसन हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपया नाथ दिन रहनाई, हुन पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम कली महला पनवा, करन करा मन सोई आना दिसे कोई, ठाकुर मेरा सूढ़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे घर समीठा, गुरमुख किने विरले डीठा, रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम, पीवत अमर पय ने काम, तन मन शीतल अग्नि निवारी, अंधरू प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सब बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल किवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पड़दा टूटा, हौ तेरा तू मैं मन मूठा, राम कली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, जिस गुर कहो सद बलिहारी, ताज मारे पूरे सा।

पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हो निर्मल जियो सोधत सोधत सोध बिचारा बिन घर भगत नहीं छुटकारा सोहर भजन साध कै संग मन तन रापे हर कै रंग छोड़ सियाण पोच तराई मन बिर हर नावे जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई हर हर नानक टेक टकाई राम करी महला पंजवा संत कै संग राम रंकेल आगे जमस्यो होए ना मेल अंगबुद का पया विनाश दुर्मत होई सगली नास राम नाम गुण।

आन संतोह आया मन पूरा पाए फिर फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत तो प्रवान जिस हृदय वसाई नांग तेजन उत्तम पाई राम कली मोहल्ला पंजवा गहो कर पकरी न आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओ चरणी आए पई तुन संतो निर्मल विचार आराम ना बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उधार रखाव जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे मुख बिरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी किन्नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रहे इस संग राचे सो कछु ना लहे इसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक ओ तरे राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्वमय पेख पूर्ण पूरया प्रतेक रतन अमोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु तू आप पछाण पी अमृत।

संग पवजल तरिगे प्रभ कई रंग देही तोय न उतरै मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हार हर औखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए।

हर शरण मन तन हर ओई ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव, जाके किन्ने गए जीव। सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माघे करण हार कहो किस अज जनाघे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमारे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बया पिया तोहे उदम करे गाडर जो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पय दयाल जो मन हुआ साधरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सा समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पए गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रघाव जाके राम बसे मन माही तुजन दुत्र पेखत नाही सगले कासवारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा काहे करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे साध संग सो पव जलता रहे अमृत पीवो साध प्यारे मोह खूजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतर हो पार राम कली मोहल्ला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दहदिस जागे ऊपर चरण तले आकाश कड़मे सिंध की ओ परगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कै आठ पैर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनो साबन सूद पय ते निरपो डरता फिरे हुंदी कौ अणहुंदी हिरे देही गुप्त बदेही दीसे सगले साज कर जग दीसे ठगन हार अन ठगदा ठग बिन वखर फेर फिर उठ लागे संसभा बिन करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोय नानक ताकी परम गद होए राम कली मोहल्ला पंजवा जो तुझ पावे सो थिया सदा सदा हर की शरणाई प्रभ नाही आन बिया रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे इन में किशु न संग लिया दिखे ठकोरी खाए पुलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जो मैं कृत पया पूर्व कमाने छुडे नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा तिस न बूझे बहुत हया असाध रोग उपजिया संदूखन दे बिनासी महा खया जिने निवाजे तिन ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्मया राम कली मोहल्ला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सगाई जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल जाकी तूर काटे जमजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्ज सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण कृपा निधान सदा सदा जयगे कुर्बान निर्मल मत दे जिस दान तजे विकार बिन से अपमान एक तिहाई के साध के संग पा बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रब रया गुणतास दर्श दे तारो प्रव्यास नित नानक चितवे सच अरदास।

ऐसे दखन घर दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ जल पीजो तिखा मिटंत तन बिसे ग्रे आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर घर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए जो अंधले पिघत होए आनंद गूंगा भगत गावे बोचंद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगल उधार जो पावक संग सीत को नास ऐसे प्राशित संत संग विनाश जो साबन पापर उजल होत नाम जपत ता परम पखोत जो चक्री सूरज की आस जो चात्रक बूंद की प्यास जो कुरंक नाद कर्ण समाने त्यो हर नाम हर जन मने सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पैता आए चीत दया तारी तन तारण हार बंधन ते होई छुटकार तब थान देखे नैन अलोय जिबन दूजा अवर न कोय परम पै छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब समात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिये प्रसगल तुम्हारी तारना यो मन हर के नाम पधार ना रहाओ खेन में ताप उतापे कुदरत तब करते के कारना ताम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिदारना नाम जत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत शरण जो आवे प्राणी तिस ईहा उहा ना हारना सुख दूस मन की बिरदा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन की आप पालना अनकबार और जन ऊपर नानक वंजे वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दर्शन पेड़त पाव सब नस हरस्यों दे मलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते हुए सुखाई रहाओ सगल दूप का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पद पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर वंजाई कारण कारण समरथ स्वामी नांग ते शरणाई बंधन तोड़ चरण कम दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंध कूप बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बने आई जन्म मरण का सिरसा चूका बहाड़ कथो ना ताई नाम रसायन इव मनाराता अमृत पी तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया नित लव से आ जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई नाम धन पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियाण पुगतना मेरी पूरे गुरु कमाई जत स संजम सुच गए सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र मां बिगया मैं गुर साते लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिगे लड़लाई साज तर्म का बेड़ा बंधया अवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजोनी संपो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अगाई एकंकार निरंजन निरपो सब जलत रहा सुमाई भगत दान भगतां को दीना हर नानक जाते माई राम कली महला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तारा ताराम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सदगुर खेप निवाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत पहनना जाई संतो चरण कमस्यो लागो त्याना साचे दर्श समाई संतो गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत त्रिवत अगाई संतो आत्मराम रव्या सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आद जुगादी है पीहोसी सब जिया का सुखदाई संतो आभ्यंत अंत नहीं पाईये पूरया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बज क्रम राम नाम चितारी भूमन केर महत बिगड़ी गुरमुख नांग पार उतारी रगाओ अंतर सूखा बार सूखा हर जा मलन पय सुटारी जिसते लागे तने निवारे प्रभ जी अपनी कृपा तारी उधरे संत परे घर सरणी पर बिरसे महा अंकारी साधु

संगत यो फल पाया, एक केवल नाम आधारी, ना कोई सूर ना कोई हीणा, ता प्रगटी जो तुम्हारी, तो समरथ अकथ अगोचर रव्या एक मुरारी, कीमत कौन करे तेरी करते, प्रभ अंत न पारा वारी, नाम दान नानक वडियाई, तेरिया संत जना रे नारी, राम कली महला तीजा आनंद, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा, कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी।

करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिरत सदा तेरी नाम मन नमसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिदिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित करस पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कहे लागे कहे नानक तहे सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लवे बिन दे निमाणी लवे बाजहो क्या करे वेचारिया तुद बा समर्थ कोए नाही कृपा कर बनवारिया केस नौ होर था नाही शब्द लाग सवारी।

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पंजवा हर हर ताए मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मेरे संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुन चरना ना जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक राज जन की चरण कमल है आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत वखानई जी जंत सत त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मानई बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पछानई।

आठ पैर अपना प्रभु सिमरे, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रोतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रा लगा मीठा पाना, सब इश कुन्नी आस पूरी मिले सदगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर ना ही दुख बसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत श्लोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहया एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक, हर सिमरत मन तन सुही बिरसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभु दीनानाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृह स्थान तिसका तन जोबन तन माल जियो, सा सदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक, तदा उत्तरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नानक पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक, धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ शंत, सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध भया वड पागी हो ग्रे प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर निरपमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन धीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोल बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गुर रस गीत बादनी पावे सुनिए गहे गंभीर गवाया गुरस कहे अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक पछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृत सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते इवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे ते लोए एक को बूझे सूझे पद होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म जोत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारन हारा इस एक का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊंचो देख शब्द बिचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कथे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंगराता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत निर्मायल शीश देहा रे सी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द साथ लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पत मती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीस्यों मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लाभ लोभ बुरा अंकार लाड़ी चाड़ी लाए तबार मानमुख अंधा मुग्ध गुवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा नाम पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आज सैल नीच कर होए आज देख निवे जिह दोए आज होए तामुक्त से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वरते एक को सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कड़ थाप आप अगोचर तंदे लोई जुग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई ना विहुना मुक्त के होई।

वह चूर गए तन में चीत गवार तन विरली सच संचया निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान देह जे राचे रंग एक मन दीजे सिर सौंपिए पी करते की टेक तंदा तारत रह गए मन में शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए टेटे गुर गोविंद बन बन फिरती टूणती बस्त ही कारबार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार ना ना करतना छूटिए विण गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओ है अगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान विण नावे निरपो कहा

ले गया ने तीर्थ नहाइए तो फल पाइए मैल न लागे काई गोरखपूत लोहारी पा बोले योग जुगत विदसाई हाटी बाटी नींद न आवे पर कर चितना डुलाई बिन नावे मन टेक न टेकई नानक पूख न जाई हाड पटन कर गुरु दिखाया थे जे सच वापारो खंडक निंद्रा अल्प आहारं नानक तत् विचारो दर्शन पेख करो जो गिंद्रा मुंद्रा चोली खिंता बारह अंतर एक सरेव हो खड़ दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाए गे पुरखा बहुत चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हो में ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवार गुर के शब्द सो समझ परी खिंता चोली पर पुर रहे नानक तारे एक हरी साचा।

मन जा गोटी सत संतोख संजमख नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बहार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बहार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

कथियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइये सह संतु का आसन जाने क्यों सिद्धे बैराइये गुर के शब्द हमें बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द को जो

रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का दे विचार, भवजल शब्द लंघावन हार, पवन आरंभ सदगुरु मत वेला, शब्द गुरु तुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द कथा विचारी, गुरमुख हो में अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार। हिवे का घर मंदिर अग्न पिराहन, कावन गुफा जित रहे आवा।

सो अवधूती से पुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड तिस उदासी का पड़े ना कंध बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला तो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले उपने बिंद न दे चरणा इस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला तो पैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मैं रूपे थम आए निस अंतर रहे ध्यान ते बैरागी सत समान बोले परतर सत स्वरूप परम तत् मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीव है जोत तन पड़ाए क्या खाजे पुत आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे हे आओ तूप शाम जे सम कर सह

मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

मुद्रा मदक सह तुन लागी सुगमन पुछ नखारी रे तीर्थ बरत नेम सुसंजम रस गहने देओ रे तुरत प्याल सुधारस अमृत यो महारस पेओ रे निजर तार चोवे निर्मल ए रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछे एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पाओ पाठी मन तारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मा चिड़ा मद रस चाखिया तिर पवन पया उजियारा अरहाओ दुपर जोर साई पाठी पियो महारस पारी ताम क्रोध किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गमत सदगुर ते सुध पाई दास कबीर तास बंद माता उचकना कब हूं जाई तू मेरो मेर परबत स्वामी ओढ़ गही मैं तेरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रघाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमकन की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दरस, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारस है ना परस, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहा नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहा नरंजन रमैया होए रगाओ, देव सताने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड पर आला, आले पीतर दाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाय, तुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊगा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

साधु तूर करो नित मजन सब किलबिख पाप गवायण पूर्ण पूर रहे कृपा निध काट काट दिष्ट सुमायण जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुलना लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दसन दास दसायन नट महला पंजवा मेरे सर्वस नाम निधान।

सदगुर ज्ञान मज्जन गय नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस न परस फय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड गए साबत तब लग किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन विश्वा जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद।

पुरख सद जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा भूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही पुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निहतारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डे बिखकारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन बिसे जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है, हलके सबे बिगारे, मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग ले मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक राख।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर रख लियु तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रवजाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निद करो जुदरिया, हर मिलो कर्म वेदाता, लिलाड लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आई मिले सुख पाया, सब केलभ पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान मेल्यो सदगुरु, खिन बंध मुक्त करायो, प्रामस्त के तुर लिखया, गुरमती घर लिवलायो, पंच शब्द दर गए बाजया, हर मिल्यो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिए, ज्यो डोन जरे गलायो, मत दे हर अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो परम पो भागा रगाओ, पय पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बिख खीन पय सांत आई, हर उतारियो वडभागा, मान मुख रंग कुसुम्भ है कछुआ, ज्यो कुसुम चार दिन चागा, खिन मैं बिनस जाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, काया कापर चीर बो फारे, हर रंग न लहे सुपागा, हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हर रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर हर, मन जपगे हर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया, हर मिलिया हर बनमाला।

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार। रखाओ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड़ भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम। रखाओ बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत।

सतगुर प्रसाद। तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे। रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन किसन ओढ़े कामली।

सब नगरी में एको राजा सब पवित्र रह थावा बाबा देव सा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी दुत्स पाना सो सतकर माने काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवां, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती कमुदत, चलते खबर ना पायो। रघाव सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवां, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना कालेओ, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चालेओ। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेव्यो अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रख्यो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा मैं पूख, सोई कर सूखा,

परम मन का सदगुर सरणी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया सोई कार कमाए, पाओ लागा गोविंद स्यों काल पाई ताए। खेत मेरे जमया निखुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कत हो जाए। हो नानक सुख पाया तृप्त रहे आगाए, मारू महल्ला पंजवा फूटो आंडा परम का मने पयो परगास। काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास, आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो रघाव, जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगार। जिसकी अटक तिसे

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इसते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम देहे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवां।

बिना को कछ नहीं, गुर पूरे पूरी मदकीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुर बिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुखे आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे।

दुख दर्द कलेश बिन सहे, जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े, बिखना पोहे ताहे, रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे, अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन, ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधक देव मुंजा, वेद करे उचार, तेमर स्वामी सुख सहज पुंच, नहीं अंत पारा वार, अनक प्राशित मिटे खिनम है, हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन, कोड़दान इसनान, बल बुद्ध सुध प्राण सर्वस, संतना की रास, बिसर नाही निमक।

क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना, जागना जागन नीका, हर कीर्तन मैं जागना, लागना लागन नीका, गुर चरणी मन लागना, ए बिद तिसे परापते, जाके मस्तक भागना, कहो नानक तेस सब कुछ नीका, जो प्रभु की शरणागना, मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना, हरहाओ तुद आपत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हिरदे वस, दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगस, दुरमत दूखत जावना, दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना, नौ निध रिद सिद्ध पाई, जो तुमरे मन पावना, संत बेरा में थाव न कोई, अवर न सूझे जावना, मुए निर्गुण को कोई न रख, संता संग सुमावना, कहो नानक गोर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रावना, मारू महला पंजवा, जीवना सबल जीवन, सोन हर हर जप सा जीवना, अरहाव पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख न लागे, संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रख पद परमेसर, फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मध्य हरस, संत संत मैं लीवना, बिन तागे बिन सूई आनी, मन हर भक्ति संग सीवना, मातिया हर रस में राते,

आपे बक्सलाए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा फिर रावे, सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुम करे सा विख है, एक ना बक्सलाए तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। हमे तात मोरस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नहीं पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है।